पौड़ी चाकर लगे चाकरी चले खसमे पाए हुरमत सुनो अगलियो वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंद्र पाए वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए जिसता दिता खावना तिस कहिया सा बास नानक अपना चले नाल।

पौड़ी नानक अंतन जपनी हरता के परवार आप कराए साक्षी पर आप कराए मार इकना गली जंजीरिया तुरी चले बिस्यार आप कराए करे आप हों कैसे हों करी पुकार नानक।

पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी।

पवित्र स्थान साच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सब

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित तोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथ कवन

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, फुरमान तेरा सिरै ऊपर, फिर ना करत विचार, तुही दरिया तुही करिया, तुझै ते निस्तार। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस धरौ के प्यार, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम घर का, जी आए पावै मार। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरौ ता हर कै द्वार। मत हर पूछै कौन है, परा हमारे बार। जाओ तौ प्रेम खेलन का चाओ, सिर तार तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। गगन दमामा बाजेओ, परयो नीसान काओ। खेत जो मांडे ओ सूरमा, अब

0: तेरा नाम सत है, नाम सत है श्री वाहे गुरु।
1: पौड़ी वड्डा वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग नेक ना जपन करतबा, जिया दर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे बस तेरा कर पला, तेरे कर नंद वधाई तुद कर, मन मता तेरे अपना आप जर।

उठा। हार के जान सत गुर सत पुरखा, बिना उकाराओ गुर पास। हम कीरे किरम सत गुर सरणाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव, मोकौ राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमारी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरधा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम, जा हर हर जियो परया। सैल पत्थर मह जंत उपाई, ताका रिजक आगै कर धरया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भउ करिया। ऊडे ऊडे आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरी शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दास अष्ट सिद्धा।

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय पारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चूज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तेन कुर्बाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ। सब तेरी तू सब नी त्याया जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।
तू आपी करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पई ले निवासा, पानी पावक तिनह किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियाले। मन एक न चेतस मूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई परापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरै कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप तप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोह बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरिन कौ आज संघरियै। पूरन होय हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चौने चौने सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा।

कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जीती बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलीश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होय मारे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहारे हो ताकि ताप तनक मह हारे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुभेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारु जी को खावे जी को पुंचे तिसका होय उदारु एह वस्त तजी नह जाई नित नित राख और तारु तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारु सलो

सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री

मान प्रीत चरण प्रभ परसन रसना हर हर भोजन त्रिपतानी अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहयो जस स्वामी।

और क्या जाने को रहा सच्चा साहिब सच तू मेरे शाह तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिए साह दूजा नहीं को सबना विच तू वरतदा शाह सब तुझे त्यावहे दिन रात

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा।

संभाले सुबना जिन करता करना किया चिंता फे करनीता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान भाग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या ताज महला पहला।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम ना होई तू करता करने में नाही जा करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता।

0: अभगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उच्चर तै जगत उदारन पायो।
1: जगत उदारन नव निदान भगत है पव तारन अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारन सहज तरोवर फल्यो ज्ञान।

गोर परचा पायो गोर रामदास कालुचरे ते शब्द निशान बुझायो सेज सदा से शवान संतोष राय चो सदा सील सुना सो है गुरु शब्द समाचार्यो नाम टेक संगात बो है आजोनियो पाला माल सतगुरु संग निवास गुरु रामदास का लुचरे तो सहज सरोवर बास।

बुझाइया परम पुले संसार छुट्टो जुनी संगार जम को ना डंड काल गुर मत त्याई है मन प्राणी मुगद विचार एह निस जप।

0: राखू सरनाई, एक अरदास पाट कीरत की, गोरे रामदास राखू सरना।
1: सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाइ, दर्शन परसियै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाइ, होवै सिफत खसम्मदि, नूर अर साहु कुर साहु चटियै, तुद डिठी सच्ची पाति साह, माल जन्म जन्म दी कटियै, सज्जन सच्चा पाति साहु, सिर साहां दै साहु,

करत पाप अब हारा पै मरबे को बिसरत नाहन तेह चिंता तन जारा किए उपाव मुकत के कारण देह दिस कौ उठ ताया काट ही पीतर बसै निरंजन ता

0: सब को निवे आपको पर को निवे न कोए तर तारा जू तो लिए निवे सगोरा होए अपराधी दुना निवे जोहंता मृगा है शीस निवाए क्या थी है जारी दे कुसुदे जाहे महला पहला
1: पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज स्वगत समादं मुख झूठ विपुखण

हे गुरु बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी।